0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे. अथ वार्ताः. भारत वियतनाम देशयोर मध्ये डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ खनिजाः चिकित्सा विनियमनम् सार्वजनिक क्षेत्रस्य लेखा परीक्षा डिजिटल व्यवहारः संस्कृतिः पर्यटनम् इत्यादिषु बहुविध क्षेत्रेषु सन्धयः कृताः. नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ वियतनाम राष्ट्रपतिः टोलाम इत्यनयोर्मध्ये द्विपक्षीय वार्तायाः अनन्तरं सन्धि विज्ञप्तिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि. संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् व्यापक विमर्शानन्तरं पक्षद्वयेन स्वसम्बन्धं वर्धित व्यापक रणनीतिक सहयोग पर्यन्तं अग्रे साधयितुं निर्णयः कृतः.
1: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा. भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.
0: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः ह्यः सायं राष्ट्रपति भवने स्वस्य वियतनाम समकक्षस्य टोलाम इत्यस्य स्वागतं कृतवती. आगन्तुकस्य गणमान्यस्य सम्मानार्थं सा भोजमपि आयोजितवती. राष्ट्रपतिः अवदत् यत् भारत वियतनाम सम्बन्धस्य उन्नत व्यापक रणनीतिक सहयोगस्य अभिवर्धनम् न केवलं द्विपक्षीय सहकार्यस्य गतिं प्रदास्यति अपितु क्षेत्रे शान्ति समृद्धौ अपि योगदानं करिष्यति. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान अद्य जयपुरे संयुक्त सेनापति सम्मेलनस्य द्वितीय संस्करणस्य शोभां वर्धयिष्यतः. द्विदिवसीय सम्मेलनस्य अस्य मुख्य

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ವಂದೇ ಮಾತರಂ 150ರ ಸಂಭ್ರಮ, ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ 90ರ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरुलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम एआईएडीएमके से

0: बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर सिंह महतो भी मौजूद रहे। शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 बजे होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नई 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात

0: इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तोलान मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तोलान लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
1: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है। हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. By becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का 1 वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका

0: संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी टू एक्सपैंड हिज कैबिनेट टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अमंग होस्ट ऑफ डिग्निटरीज टू अटेंड स्वेरिंग इन सेरेमनी इन पटना। Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, two ministers from Lok Janashakti Party Ram Vilas and one each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. The newly elected Congress MLAs of Keralam will meet at Thiruvananthapuram today to elect their leader. Congress-led UDF, which secured 104 out of 140 assembly seats in the state, will approach the governor once he reaches Thiruvananthapuram from Chennai. Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, who is also holding the additional charge of Tamil Nadu, is in Chennai today. More from our correspondent.
3: In Keralam, meeting of the newly elected legislators of Congress will be held today morning at Thiruvananthapuram. In the meantime, AACC observers who reached last night at Thiruvananthapuram will continue discussions with the individual MLAs. On the other hand, informal discussions between various constituents of UDF is also progressing on the ministerialship position. Congress sources hinted that an immediate decision will be taken regarding the chief ministership and approach the governor to form government.
2: In Tamil Nadu, DMK chief M.K. Stalin has said that his party respects the people's mandate for a new party assuming power in the state, and he does not want another election or a constitutional crisis. He also said that his party will not stand the way for the formation of a new government. Mr. Stalin also rejected the rumors that DMK is in talks with AIADMK to form the next government. In a shocking incident, Chandranath Rath, close aide of BJP leader Shubhendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram, North Chobis Parganas district of West Bengal. We have more from our correspondent.
4: Reports say that eight assailants on four motorbikes ambushed Rath's

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: कोमल वचन और विनम्र व्यवहार ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
1: इस सुंदर विचार के लिए हम उमंग कार्यक्रम की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
1: असंबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके अद्भुत और रहस्यमय संसार की।
1: जी,
2: भारतीय शास्त्रों में समुद्र को अनंत ज्ञान का प्रतीक और जीवनदाता माना गया है। गीता, रामायण, पुराणों और वेदों में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। समुद्र मंथन की घटना से हम सब परिचित तो हैं ही, तो अजीत जी, आज हम समुद्र की किस विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, अभी अभी आपने कहा समुद्र को शास्त्रों में जीवनदाता कहा गया है।
2: जी,
1: है
2: ना? बिल्कुल।
1: आज हम चर्चा करेंगे कि इसे जीवनदाता कहने का कारण क्या है। तो चलिए आपसे करते हैं शुरुआत।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम समुद्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि पूछा जाए कि हमें जीने के लिए प्राणवायु या ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सबका उत्तर होगा पेड़ पौधों से। ये ठीक है, लेकिन सच ये है कि समुद्र लगभग 60-70% तक ऑक्सीजन पैदा करता है।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी हाँ श्रोताओ, यदि प्रतिशत को मान लें तो कहा जा सकता है कि समुद्र पेड़ पौधों से भी अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इसे जीवनदाता भी कहा जाता है।
2: अजीत जी, मैंने पढ़ा है कि समुद्रों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सांस लेने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि समुद्र ऑक्सीजन कैसे पैदा करता है।
1: जी विमलेश जी, समुद्र में फाइटोप्लैंकटन होते हैं। जरा श्रोताओं को जानकारी तो दे दें कि फाइटोप्लैंकटन होते क्या है।
2: श्रोताओं, फाइटोप्लैंकटन दरअसल बहुत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो समुद्र के जल में तैरते रहते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे सूर्य की गर्मी से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
1: जी, एक रोचक बात और जान लेते हैं। फाइटोप्लैंकटन नाम ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से आया है।
2: जी।
1: फाइटो का अर्थ है पौधा और प्लैंकटन का अर्थ है भटकने वाला या तैरने वाला।
2: जी।
1: ये पौधे समुद्र में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, इनकी संख्या अरबों खरबों में है। ये धरती के सबसे पुराने ऑक्सीजन उत्पादकों में से एक हैं। अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक और प्रश्न मेरे मन में है, वो ये है कि इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन हवा में कैसे आती है, यानी हमें कैसे मिलती है।
1: जी देखिए, समुद्र में बनी ऑक्सीजन दो तरह से फैलती है। तो पहली बात है, ये ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इसी ऑक्सीजन से मछलियां और सारे समुद्री जीव सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी एक और बात है।
2: दूसरी बात है, इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन लहरों और हवा के संपर्क में आकर हमारे पर्यावरण में पहुंचती है।
1: जी, और इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं।
2: लेकिन अब एक खतरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, एक बहुत गंभीर बात आपको बता दें, समुद्रों में हर दिन हजारों टन प्लास्टिक और कारखानों का कचरा नदियों द्वारा लाया जाता है। समुद्री तटों पर पर्यटक भी कचरा फेंक देते हैं। शहरों का कचरा जहाजों द्वारा समुद्रों में लाकर फेंक दिया जाता है।
1: और श्रोताओं, इससे होता यह है कि समुद्री जीवों के जीवन पर संकट आता है।
2: जी,
1: और समुद्र द्वारा ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
2: श्रोताओं, क्या आपको पता है कि समुद्रों में कुछ जगहों पर प्लास्टिक इकट्ठा होकर बड़े बड़े ढेर बना लेता है, जिसे प्लास्टिक या गार्बेज आइलैंड कहते हैं। ये तैरते हुए कचरों के द्वीप हैं। तो आइए

0: अपने जीवन दाता समुद्र का सम्मान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरा इधर उधर न फेंकें। शास्त्रों में समुद्र को देवता भी माना जाता है।
1: श्रोताओ, समुद्र का विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। यह जलवायु, ऋतुओं और पर्यावरण को भी नियंत्रित करता है। ऐसा भी कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है।
0: जी,
1: आइए आज अपने जीवन दाता समुद्र को धन्यवाद दें, हम उसकी रक्षा करें।
0: तो समाप्त करते हैं आज की चर्चा। श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: आज का प्रश्न है, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, कोई दो कारण बताइए।
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800044055 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, माला की चांदी की पायल।
1: इस कार्यक्रम में एक प्यारी सी बच्ची के बारे में बताया गया है जिसे पायल पहनकर घर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो पायल पहनकर घूमती है और बहुत सी मजेदार गतिविधियां भी करती है। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित सुंदर नाट्य प्रस्तुति है, माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
3: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेस से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने
1: तो बच्चों

0: अभी आपने सुनी डराने की अलग अलग अभिव्यक्तियाँ। अब आपके सोचने के लिए कुछ बातें। विभिन्न भावों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, जैसे हंसने की, रोने की इत्यादि। तो आप भी अपने मित्रों के साथ प्रयास करके देखिए कि आप कितने प्रकार से हंस सकते हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर और ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: और अब सुनते हैं भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की श्रृंखला राग रस बरसे का एक और कार्यक्रम। शीर्षक है राग गौड़ मल्हार।
0: इस कार्यक्रम में राग गौड़ मल्हार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है और विशेष रूप से बताया गया है कि इसे कब गाया जाता है, इसकी स्वर मालिका क्या है और इसमें कौन कौन से कोमल और तीव्र स्वर लगते हैं।

राग गौड़ मल्हार। राग गौड़ मल्हार की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात कोमल नि और शुद्ध नि प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है, संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है एवं ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं उमड़ घुमड़ कर आते बादल। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना।

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आशा है श्रोताओं की ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं चंचल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।
2: इस कार्यक्रम में सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए ये संदेश दिया गया है कि मित्र वही है जो जरूरत के समय काम आए और हर संभव सहायता करे। यह कार्यक्रम एक लोक कथा पर आधारित है।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए? तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया, फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी, वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

0: जी, अभी आपने सुना कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
0: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
3: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरु मावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाश

0: आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बैनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
1: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने वतन से, अपने देश से। हम यहां सरहद से कोसों दूर बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपने अपने देश प्रेम की। तो सोचिए, सरहदों पर बैठने वाला हर वो सिपाही, हर वो अफसर जो मां

सरहद की रक्षा कर रहा है। आसमान में जमीन पर वो चांद सितारे हमारे, वो धरती मां का मिट्टी का वो लेप, और उसी लेप के बीच में वो भावनाएं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। संदेश टू सोल्जर्स एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान की फौज के उन सितारों से, सुसज्जित अफसरों से, उन फौजी भाइयों से जो अपना परिवार पीछे छोड़ के आपके परिवार को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद हैं, मेजर एस के यादव, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन की और उसके बाद 14 से ज्यादा साल उन तमाम जगहों पर भारत मां की रक्षा की, सेवाएं दी अपनी। हमने कई जाबाज अफसरों और सिपाहियों के साथ आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आज हम टैंक रेजिमेंट की बात करेंगे। टैंक के अंदर की वो जिंदगी, टैंक का वो लोहा जो टक्कर लेता है दुश्मनों से, टैंक रेजिमेंट की तैयारी, उसका फौलाद आज हम सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: आइए मुलाकात करते हैं यहां मेजर एस के यादव के साथ। स्वागत कर रहा हूं सर, और पूरे हिंदुस्तान का ये नमस्कार, ये सलूट स्वीकार कीजिए।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: कैसे हैं सर आप?
1: एब्सोल्युटली फाइन, फर्स्ट क्लास।
0: आज हमने आपको सिविलियन ड्रेस में बुलाया, लेकिन जज्बा वही है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो ताकत है, भारत माँ की वो ड्रेस आपकी।
1: बिल्कुल, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एज दे से, यू नेवर लीव द आर्मी। एक बार आप आर्मी ज्वाइन कर लें तो एक फैमिली बन जाती है
0: जी,
1: और आप चाहे रिटायर हो जाएं, सर्व कर रहे हो, वो पूरी फैमिली एक जैसी होती है। टिल यू रीच योर लास्ट स्टेज, द होल फैमिली, योर रेजिमेंट इज विद यू इन गुड एंड बैड टाइम्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंडियन आर्मी।
0: आप तो टीनेज में ही इसके साथ जुड़ गए इंडियन आर्मी।
1: मैं वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स था। फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए में चले जाएं आप हमारे टाइम पे, तो आप 15.5 साल की उम्र में आप एनडीए जाते हैं, आपकी दाढ़ी भी नहीं हुई होती, फर्स्ट टाइम शेव होता है वहां पे जाके। तो
0: रैगिंग हुई थी सर आप? उसके बारे में
1: याद है।
0: 15 साल की उम्र में सर फौज में चले गए आप, और रैगिंग तो हुई होगी।
1: रैगिंग की वजह से मैं कहूंगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंड साइट, क्योंकि वो रैगिंग ने ही हमको वो स्ट्रेंथ, हमको वो ताकत दिया है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया। वो एक फाउंडेशन बन जाती है और वो फिर फॉर लाइफ टाइम आपके साथ रहती है वो। और वो बॉन्डिंग जो होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, वो रगड़ा के साथ ही होती है। बेसिकली रगड़ा होता है, एंड देयर इज लॉट ऑफ एकेडमिक्स ऑफ कोर्स। वी हैव ए डिग्री फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन बीएससी एंड बीए। अदर देन दैट द सब्जेक्ट्स आर ऑल मिलिट्री साइंस, मिलिट्री ज्योग्राफी एंड देयर आर फील्ड एक्सरसाइजेस। लेकिन हम जो एनडीए से जो होते हैं, वी आर बॉन्डेड सो वेल। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी बॉन्डेड है। और अभी भी हम लोग रिटायर हो चुके हैं, पीपल माय कोर्समेट्स हैव बीन जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, बट वी स्टिल रिमेन एंड टॉक लाइक एज इफ वी वर इन एनडीए।
0: आपने व्हाट्सएप का नाम लिया, तो आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसके साथ, उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070, 9868107070। कोड वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए सर कि जल्दी समझ में आ जाए। आपको 15 साल की उम्र में किसने प्रेरित किया कि आप फौज में जाइए, एनडीए में जाइए?
1: देखिए, मेरे फादर एयरफोर्स में थे
0: जी,
1: और हम लोग एक फौजी फैमिली कह लीजिए आपको। मेरी सिस्टर आर्मी में डॉक्टर थी, वो उन्होंने शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से की जो कि एज ए आर्मी कमांडर जनरल रिटायर हुए हैं। और हमारे टाइम पे फौज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं।

0: बड़ा हमारी फैमिली में।
1: ओके, फौज में ही जाना है।
0: शुरू से ही एनडीए की तैयारी करनी है और यूनिफॉर्म पहननी है, क्योंकि फादर को देखा था यूनिफॉर्म में, और कोई कुछ उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं।
1: मदर तैयार थी कि फौज में जाइए, इतने सारे फौजी घर में, बोला नहीं उन्होंने ये बच्चा भी जाएगा वहाँ।
0: उनके हस्बैंड भी थे फौज में, उन्होंने फौज के बाहर फ्रेंकली कोई लाइफ ही नहीं देखी हमने। हमारा जो फौजी कंटोनमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो ए क्लोज निट फैमिली, सारा सेल्फ सफिशियंट होते हैं वहाँ पे, फ्रॉम ऑफिसर्स मेस टू टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, योर मूवी थिएटर, एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशियंट। यू डोंट रियली हैव टू गो आउट इन स्मॉल लिटिल स्टेशंस टू द सिविलियन एरिया।
1: सो इज दैट एडवांटेज और You think you miss something अगर civilian area में नहीं जा रहे, कुछ ऐसा?
0: नहीं, ऐसी something? कोई बात नहीं है। Actually, most of the cantonments or army stations are in the field areas. So, field area में तो you have to be self-sufficient, because आपको कुछ मिलता नहीं है इतना जो आपको चाहिए, चाहे राशन हो, चाहे जो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो तुम्हारे आस पास ही होनी चाहिए।
1: जी,
0: मेट्रो सिटीज में दूसरी बात है।
1: ओके,
0: वी हैव ऑफ कोर्स अप्रोच टू मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स एंड सो ऑन। कभी कभी आते हैं फील्ड में, अगर आप पोस्टिंग कर ले तो अगली पोस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली टाउन में दे देते हैं उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए।
1: ओके, मुझे ये बताइए कि आपने अपने फादर के साथ, आपके फादर की तो पोस्टिंग होती रहती होगी, जब वो एयरफोर्स में थे तब आप ज्यादा स्टेशन में गए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सिटी, लाइफ स्टाइल अलग, भाषा अलग, खान पीन अलग, पढ़ाई भी अलग हो गई होगी।
0: यस, बिल्कुल सही बात है। ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज, बिकॉज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज दैट यू एक्चुअली कम टू सी सो मेनी प्लेसेस, अ न्यू प्लेस एवरी टू इयर्स, थ्री इयर्स, एंड आई रियली लव दैट। एंड एक्चुअली वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, आई स्टिल लव टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ दैट, परहैप्स इन यू नो थिंग व्हिच आई हैव गॉन थ्रू। एंड आफ्टर ए वाइल मेरे फादर ने सोचा, भाई बहुत घूमना हो गया बच्चों को, तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया, ए फोर स्कूल में, सुकोटो पार्क दिल्ली में, बोर्डिंग स्कूल,
1: टैफ्स कहते थे उसे, टैफ्स,
0: टैफ्स, अब टैफ्स हो गया,
1: पहले और मेरा एक कनेक्शन है, एएफसीएस
0: होता था।
1: ओके,
0: सो उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाला, तो डिसिप्लिन और बढ़ जाता है, एनडीए की तैयारी हो गई, सो that is how the academics was. Luckily, I went through the NDA exam in the first attempt.
1: जी,
0: and NDA चले गए।
1: और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप टैंक रेजिमेंट के साथ जुड़े, T-72 टैंक के बारे में हम बात करते हैं, अहमदनगर में। आपकी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी?
0: नहीं, पहली पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में होती है
1: जी,
0: सबसे पहले। उसके बाद वहाँ 6 महीने बिता के हम लोग एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं।
1: ओके,
0: जो हमारा टैंक्स का कोर्स अहमदनगर में होता है।
1: ओके,
0: तो वहाँ पे हमको एक्चुअली रियली टैंक के बारे में पूरा पता चलता है, उसकी ट्रेनिंग, फायरिंग, उसका डीएनएम जो होता है, ड्राइविंग, मेंटेनेंस, गनरी, उसकी रेडियो कैसे चलती है।
1: ओके,
0: और उस जमाने में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास विजयंत होते थे, और उसके बाद देन T-55 से हम T-72 में ग्रेजुएट हुए
1: जी,
0: जिस पर मैं इंस्ट्रक्टर भी था। मैंने अहमदनगर में आई वाज इंस्ट्रक्टर ऑन T-72 टैंक, एंड अब तो T-90s एंड अर्जुन्स आ गए हैं, उसके भी अपग्रेडेड
1: वर्जन्स है। सर, टैंक के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं, दे वुड आल्सो वांट टू लिसन, कि टैंक का पहला जब आप देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो फौलाद लगता है पूरा, है ना? सो यू वेंट देयर बाय चॉइस और
0: My first choice in the Indian Military Academy was the Tank Regiment.
1: Okay.
0: And I joined a regiment called the Deccan Horse.
1: Deccan Horse.
0: जो कि 1790 में raise हुई थी as the private army of the Nizam of Hyderabad.
1: All right.
0: And then it went through various transformation and it became Royal Deccan Horse and then the Deccan Horse after 1947. And we had a Muslim squadron in before 1947.
1: Acha.
0: After partition, that squadron went into Pakistan in a regiment called Province Horse.
1: Okay.
0: For quite some time, actually, strangely, we used to have a common newsletter also, I think, where Province Horse sort of became a sister regiment.
1: Okay.
0: Though on the other side of the border.
1: Okay.
0: And we had one officer also till quite late going to London, UK to attend the British officers who used to host.

0: टैंक्स होते हैं जो इन्फेंट्री होती है वो बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है, टैंक्स नहीं जा सकते हैं। लेकिन पंजाब या राजस्थान जो प्लेन्स में होता है
1: जी।
0: तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू होती है टैंक्स आगे जाते हैं, वो लीड करते हैं, दे ऑक्यूपाई ए पीस ऑफ लैंड एंड देन द इन्फेंट्री गोज एंड ऑक्यूपाइज इट
1: जी,
0: ये अब हमारा हुआ एंड यू गो फॉर योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। सो दैट इज व्हाट द टैंक्स डू। इट्स अ टफ लाइफ, गर्मी होती है, अंदर बैठने की बहुत कम जगह होती है।
1: हाँ, वो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कितनी जगह होगी सर लगभग।
0: आपने पता नहीं वो अभी मूवी आई थी 21 करके जो पुणे हाउस की अरुण खेतरपाल पर,
1: जी जी,
0: तो उसमें टैंक कमांडर की एक ही सीट होती है, ये ऊपर का पोला होता है, उसमें बैठ के ही जाना है, वहीं सोना है, अपने सब कुछ वहीं करना है। एक स्ट्रेंज बात मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि विजंत टैंक में बहुत जगह होती थी, तो
1: अच्छा,
0: हम लोग जो जवान जब ड्राइवर एक्सरसाइज कर रहा होता तो आपने रेस्ट करना है, आप नीचे स्लीपिंग बैग लगा के सो भी सकते थे।
1: अच्छा,
0: लेकिन जो रशियन टैंक है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है,
1: विच इज T-92
0: T-72 T-55 T-54 होते थे उसके पहले, अब T-90s कॉम्पैक्ट टैंक, उसमें एक गनर होता है, एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता है।
1: उसके पीछे भी कोई वजह है कि आप अंदर उतना स्पेस नहीं दे रहे?
0: नहीं, उसमें बिकॉज स्पेस इसलिए नहीं है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर गैजेट्स इन दैट, बहुत सारे गैजेट्स हैं, यू नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, यू नो गनरी के गैजेट्स हैं, रेडियो के गैजेट्स हैं, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के गैजेट्स हैं, सो यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम, देयर इज लॉट ऑफ एमिनेशन स्पेस दैट इज केप्ट टू लोड एंड रीलोड द बैरल।
1: तो आज के टैंक्स भी डिजिटाइज हो गए हैं?
0: सॉर्ट ऑफ डिजिटाइज, तो कंप्यूटर तो नहीं है अंदर एज फार एज आई नो नाउ।
1: देखिए, सिविलियन हूँ, सिविलियन वाले सवाल पूछूंगा।
0: हाँ जी।
1: क्या पता आपके पास एक GPS है, आपको अपनी लोकेशन, अपना रूट आप देख रहे हो, यू नेवर नो। अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो शायद बदल गई हो, इट्स मोर टूवर्ड्स कुछ ऐसा जानना चाह रहे
0: हैं। रशियंस के पास पहले एक नेविगेशन सिस्टम होता था क्वाड्रात, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था, खाली कमांडिंग ऑफिसर्स के टैंक में लगा होता था
1: जी।
0: लेकिन अब तो यू नो GPS है तुम्हारे पास, इनफैक्ट आई थिंक एक्चुअल वॉर टैंक्स की वॉर रियली स्पीकिंग हुई नहीं है। लेकिन नेविगेशन इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम नाउ एज यू नो, यू हैव इवन गूगल मैप्स।
1: वही मैं जानना चाह रहा था आपसे कि पर आप सोचिए, एक अगर मैं सिविलियंस के लिए थोड़ा समझना चाहूँ, सोचिए हमारे टैंक्स हैं, एक एक समय में अगर 10 टैंक्स अटैक के लिए जा रहे हैं, आपने प्लान है, आपका जो मिशन है वो सब कैलकुलेटेड है, पर किसी वजह से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा, चार टैंक्स इधर गए या उधर गए, या आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपके यू नो व्हाट यू प्लान्ड कुड नॉट हैपन, नाउ यू हैव टू फेस, सो हु गाइड्स द रूट, वहां आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं?
0: सी, देखिए ऐसा होता है, पहले तो ये सारी डिस्कशन सैंड मॉडल पे हो जाती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना। देर इज हमें मैप्स, हमारे जमाने के टाइम में मैप्स इशू होते थे, ग्रिड मैप्स, और उस पर हम लोकेशन कर देते अपने ऑब्जेक्टिव्स और कैलकुलेट कर लेते थे कितना टाइम है, किस स्पीड पे कितने टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। फिर हमारे ईच रेजिमेंट में एक तीन स्क्वाडन होते हैं और हर स्क्वाडन में ट्रुप्स होते हैं, तीन ट्रुप्स, हर ट्रुप में तीन टैंक होते हैं, तो यू नो सो बेसिकली यू हैव ए स्क्वाडन कमांडर, ए ट्रुप लीडर जो सबसे जूनियर होते हैं, देन यू हैव ए स्क्वाडन कमांडर एंड देन यू हैव द रेजिमेंटल CO, दे ऑल आर ऑन अ रेडियो नेट टुगेदर। सो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो आपको इंट्रा नेट पे सारी इंस्ट्रक्शन सेम मिल रही है, अल्फा स्क्वाडन आप लेफ्ट जाइए, चार्ली स्क्वाडन आप राइट जाइए, ब्रावो स्क्वाडन होल्ड करिए यहाँ पे, होल्ड फायर, ये सारी होती है। जो CO होता है वो एक दूसरे नेट पे होता है जो उसके बॉस के साथ होता है, ब्रिगेड कमांडर है और GOC के साथ, उसको वहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है, वो इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलती है। हम लोग अपने रेजिमेंटल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जो CO ऑर्डर करता है कि ठीक है राइट फ्लैंक से फायर, आप राइट फ्लैंक पकड़िए, अल्फा स्क्वाडन आप लेफ्ट,
1: स्पोर्ट्स वाली लैंग्वेज आ रही है, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक, फुटबॉल वाली,
0: इनफैक्ट दैट इज द लैंग्वेज यूज्ड आल्सो इन द आर्मी।
1: अच्छा,
0: देयर फ्लैंक्स आर देयर। देखिए बेसिक वॉर का टेक्निक होता है कि अगर एनिमी फायर कर रहा है तो आपको एनिमी का हेड डाउन कर रखना है, क्योंकि अगर आपने अटैक करना है उसके पहले एनिमी को बोलना है भाई यू मेक हिम बिजी एल्सवेयर, यू टेल योर आर्टिलरी कि वो गोले बरसाए उनके ऊपर, वो ट्रेंचेस में हैं जहाँ पर भी हैं या टैंक्स में, और यू

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और हमारे साथ आज के जो मेहमान है संदेश टू सोल्जर्स में वो है मेजर एसके यादव। आपका निक नेम मिकी है,
1: करेक्ट?
0: एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट?
1: क्लास टू में मेरी स्कूल टीचर ने मेरा नाम रख दिया था मिकी माउस और दैट नेम स्टक। आमटपोर में अगर आप किसी को बोलोगे डू यू नो मेजर स्वदेश कुमार यादव, दे विल लुक ए ब्लैंक, बट इफ यू टेल देम यू नो मेजर मिकी यादव, दे विल ऑल नो।
0: ओह वंडरफुल, रियल मेट्स आप लोग रहते हैं फौज में, है ना सर?
1: एब्सोल्युटली।
0: हम लोग टैंक्स के बारे में बात कर रहे थे, टैंक की लाइफ। आपने कहा कि अंदर की लाइफ लगता है कि टैंक जा रहा है, टैंक ने फायर किया, ये हुआ हुआ, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती है, आप बिजी रहते हैं, है ना?
1: 55 डिग्रीज तक हीट में, समर्स में टेम्परेचर जाता है, उसके अंदर रहना पड़ता है। और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में तो आपका कपोला ऊपर से बंद है, अगर सीन है,
0: ओके,
1: एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू ए सॉर्ट ऑफ ए पेरिस्कोप,
0: या
1: उसमें से आप देख रहे हैं एनिमी को। सो इट्स ए वेरी टफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लाइफ इन द टैंक, इनसाइड द टैंक।
0: ऑलराइट, हम जब 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि टैंक्स आ रहे हैं, अंडर हैं, वो सैल्यूट ले रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, लेकिन टैंक चलाने वाले कोई और हैं, तो वो उसी पेरिस्कोप से रूट देख रहे हैं?
1: हाँ, इनफैक्ट आई मस्ट इन्फॉर्म यू दैट मैंने वन ऑफ दिस परेड्स कमांड की है।
0: ओह वाओ, इट वाज
1: कॉल्ड कॉम्बैट टीम, एज ए यंग मेजर था तब मैं
0: जी,
1: तो मैंने रिपब्लिक डे परेड पे आई गेव द सैल्यूट टू द प्रेसिडेंट।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली एक गनर होता है और जब सैल्यूटिंग डाइस पे जाते हैं तो गनर को इशारा मिल जाता है कब उसने गन को राइट टर्न करना है और डिप करना है, विच इज द सैल्यूट, रेस करना है, सामने जाना है और कैरी ऑन करना है। तो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज ऑल द गनर्स टेक्निक, द कमांडर हैज टू ओनली सैल्यूट विद हिज हैंड।
0: सब बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड पर मैं भी जो आंखों देखा हाल है वो हम लोग कमेंट्री कर चुके हैं वहाँ पे, बट जब आप लोग टैंक्स लेके वहाँ जाते हैं ना, हम लोग को बड़ा गर्वित फील करते हैं कि हिंद की सेना जा रही है ये।
1: हाँ, टैंक एक सिंबल बन गया है सॉर्ट ऑफ आर्मर्ड आर्मी का, जो आर्मर्ड विंग है उसका, जो तोपखाना कह दीजिए
0: जी,
1: तो इट इज बिकम अ सॉर्ट ऑफ, यस इट इज डिवेस्टेटिंग एंड इट इज, आई हैड ए गुड टाइम इन माय टैंक रेजिमेंट, बिकॉज फील्ड फायरिंग होती है हमारी, प्रैक्टिसेस होती है रेंजेस पे, उसमें तो काफी कुछ ट्रेनिंग होती है उस पे, दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ टैंक वॉरफेयर इज ऑपरेटेड।
0: और वो जो आपकी ट्रेनिंग है दैट इज अ टफ ट्रेनिंग, इट इज नॉट लाइक चलो यार आओ प्रैक्टिस करते हैं, नो, इट्स लाइक दैट्स द रियल वॉर सिचुएशन,
1: रियल लाइफ सिनेरियो वॉर सिचुएशन।

0: कंडीशंस क्रिएट होती हैं
1: जी
0: राजस्थान डेजर्ट्स में और वहां जाकर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।
1: ओके सर, मैंने कुछ मैसेजेस मंगाए हैं कुछ बहुत देश प्रेम के साथ। बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो मैसेज भेज रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अहमदनगर से एक मैसेज आया और वो कह रहा है मेरा नाम गजानन शिंदे, गांव करजत जिला, और उसका नाम अभी अहिल्या नगर कर दिया गया है। सर ने अभी अहमदनगर की बात की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आप शायद इनको तो गजानन शिंदे जी को नोन टू यू
0: नॉट नोन टू मी बट यस देर आर लॉट ऑफ शिंदे इन दैट रीजन एंड अहमदनगर का जो आमटको स्कूल सेंटर एंड स्कूल है
1: जी
0: वो एक सेंट्रल पॉइंट है। मेनली उसी की वजह से वो टाउन ग्रो किया एक तरह से।
1: ओके
0: जो सारी ट्रेनिंग जो हमारी होती है चाहे रेडियो की ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस की गनरी की ट्रेनिंग टैक्टिकल ट्रेनिंग वो सारी जो बेसिक्स होती है वहीं पे हम लोग सीखते हैं
1: एंड एवरीवन नोज अबाउट इट देयर इज नो सीक्रेट इन इट क्योंकि आप एयर पे बोल रहे हैं तो मैं अगर अहमदनगर के लोकेशन भी बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं।
0: इट्स अ पीस स्टेशन एंड इट इज बेसिकली ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग हम लोग जाते हैं
1: शिरडी के पास जो अहमदनगर है उसकी बात कर रहे हैं। ऑलराइट आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वहां सर वो जो आप फायर करते हैं जब टैंक से उसकी एक्यूरेसी पे तो बहुत काम करते होंगे आप लोग।
0: हाँ तो उसी के लिए हम फील्ड फायरिंग ट्रेनिंग करते हैं
1: जी
0: तो कि हमारे रेंजेस हैं वेरियस प्लेसेस पे बबीना में है झांसी के पास तो वहां पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं गनरी देखते हैं पूरी एंड उसमें एक चीज होती है आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक एम ऑफ होता है मैं एक एक्सरसाइज में था कॉल्ड ब्रास टैक्स जो ऑपरेशनल था ऑलमोस्ट वी हैड गॉन अक्रॉस एंड आई वाज कमांडिंग अ स्क्वाड्रन एंड वहां पे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह रात को हमें ट्रेवल हम खाली रात को अपने कैमोफ्लाज नेट निकाल कर रात को घूमते थे और अपनी लोकेशन चेंज करते थे एवरी नाइट क्योंकि हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे और डे टाइम में अपने कैमोफ्लाज नेट लगा के चुप के बैठते थे तो डे टाइम में हम सोते थे रात को जगते थे।
1: ये कौन सी लोकेशन थी सर अभी बताना ठीक है
0: समवेयर इन द डेजर्ट बॉर्डर उसके जैसलमेर के आगे आसपास बॉर्डर के टाइम
1: जी
0: तो वहाँ पे मुझे याद है सुंदर जी आर्मी चीफ थे और मैं चाय वगैरह चाय नहीं पी रहा था सॉरी 11 बज गए थे 10-11 बज गए थे सो
1: मत बताइए क्या पी रहे थे रात के 10-11 बजे
0: दो तीन हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे तो उस जमाने में ये जहरीलीगेशन की जो आप बात करें इतना नहीं था जो पायलट्स होते थे वो अपने थाइस पर एक मैप रखते थे और
1: आजकल भी रखते हैं
0: रखते हैं वो
1: हम लोग रखते हैं
0: डेजर्ट में बड़ी मुश्किल होती है तो कई बार खो जाते थे कि भाई कहाँ जाना है तो हम लोग अपनी टोपी शोपी लाते थे वो नीचे आ जाते थे निकलते थे एनडीए का ही निकला कोई पोस्ट हेलीकॉप्टर तो एक हेलीकॉप्टर नीचे निकला उसमें से निकले सुंदर जी एंड एक थे जो हमारे तब के अरुण सिंह जी राज्य रक्षा मंत्री तो वो आ गए और सुंदर जी मुझे पहचान गए क्योंकि मैं एडीसी था आर्मी चीफ का तो उसने बोला मिकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं मैंने कहा सर मैं आई एम कमांडिंग स्क्वाड्रन हियर तो उन्होंने बोला आप इनको अरुण सिंह जी को ना टैंक के बारे में बताइए तो मैं इंस्ट्रक्टर था तो मैं टैंक पे उनको ले गया ऊपर बट आई वॉज सरप्राइज दैट ही हैड सो मच नॉलेज अबाउट दैट टैंक। अभी आपने एमिंग की बात की तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक के ऊपर तो आप सीधा फायर करते हैं के थोड़ा तो मैंने कहा नहीं सर उनको मालूम था एक चीज होती है एम ऑफ अगर यहाँ से आप फायर कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर
1: जी.
0: तो आप सीधा फायर करेंगे तब तक टैंक निकल जाएगा तो आपको एक एम ऑफ लेना पड़ता है
1: गॉट इट
0: कि पॉइंट पे लाना है और कैलकुलेट करना है कि वो टैंक उसी पॉइंट पे यूं ऐसे तभी आएगा
1: मूविंग व्हीकल पे आपको कैसे स्ट्राइक करना है
0: so very interesting things and very technical and I would compliment that time RRM I mean he had a lot of knowledge
1: और कोई कॉम्बैट कभी मौका मिला
0: हाँ मुझे वैली शैली में नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला है एक्चुअल लड़ाई तो 71 वॉर की देखी नहीं हम तो बच्चे थे
1: जी
0: कारगिल वॉर तक मैंने फौज छोड़ दी थी शायद नॉट लेफ्ट एंड टेकन पार्ट बट देन टैंक्स का इतना रोल नहीं था वहां पर
1: पहाड़ों में हम लोग जब बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शेलिंग हम लोग करते थे आप अभी हम टैंक्स के जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से आप आपका जो दुश्मन है उसका हेड डाउन करने पर मजबूर करते हैं कैन वी कम बैक टू दैट
0: यस सो व्हाट हैपेंस इज

0: that let me tell you about Kargil also. Kargil mein bhi jo ladai hui hai upar jo chade hain jo supporting jo fires diye hain wo artillery guns ne diye hain. वो सॉफन करते हैं टारगेट को. सॉफन मतलब कि जो बंकर्स हैं ऊपर उनके ऊपर धड़ाधड़ बहुत हैवी फायरिंग होती है और दैट इज द ओनली वे वेयर जो इन्फेंट्री है उसको एक वर्टिकल क्लाइम करनी है.
1: ओके.
0: तो ऊपर से तो वो शूट डाउन हो जाएंगे तो उनका सिर नीचे रखना है, उनका ध्यान निकालना, उनको इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है कि वो खड़े होकर शूट भी ना कर पाए और हमारी फौज वहां तक पहुंच जाए.
1: ओके.
0: तो दैट इज एन अटेम्प्ट. उसमें मरते हैं और कुछ जांबाज जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां जाके और फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है
1: जो कि हुआ. मतलब yes, हमने देखा वहां
0: हुआ.
1: हमारे पीवीसी जो हैं परमवीर चक्र से विजेता हमारे शो में भी आ चुके हैं.
0: यस यस एब्सोल्युटली
1: संजय कुमार.
0: और यही चीज जब पंजाब साइड या प्लेन्स में होती है वहां टैंक्स का रोल,
1: वहां टैंक्स का रोल,
0: क्योंकि वहां पे कोई चढ़ाई नहीं करनी है. वहां पे बैटल फील्ड आ रही है, टैंक कॉलम्स आ रहे हैं, आरटी आ रही है, आपने टेक ओवर करना है तो टैंक्स लीड करते हैं वहां पे.
1: okay.
0: और आजकल तो बीएमपी आ गई है जिसमें और टैंक्स पर भी इन्फेंट्री को हम अपने पीछे कैरी करते हैं.
1: right.
0: तो हम आगे तक जाते हैं और टैंक्स एक्चुअली गो एंड अटैक, टेक ओवर द प्लेस एंड कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. इन्फेंट्री जो पीछे आ रही होती है बीएमपी में वो उतरती है और फिजिकली वहां पहुंच जाती है पॉइंट पे, अपने ट्रेंचेस डिग करती है और वो बैठ जाती है, ये हमारा हो गया एरिया.
1: बट सर आज के टाइम में जस्ट अ लेमैन क्वेश्चन, टैंक जहां पे हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, ड्रोन अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैंक के लिए इट्स मोर डिफिकल्ट द रेजिमेंट और इट्स लाइक दे हैव देयर ओन वेज टू हैंडल सच अटैक्स.
0: यू सी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है
1: जी,
0: दिस वॉज ए टोटली डिफरेंट ऑपरेशन. इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम did not really cross the border and we had remote controlled drones. We set off missiles without crossing the border. The aircraft shot their targets without really crossing the border. It was a totally different game and I bore a lot to the Indian artillery because artillery ka role bada heavy tha idhar. They have these long range guns. They had their own targets and they were doing it. मौका नहीं मिला ऑपरेशन सिंदूर में. शायद अगर वो और दो चार दिन और चलती तो आर्मोर्ड और इन्फेंट्री भी अंदर जाके फिर करना पड़ता तो वो दूसरी बात थी, लेकिन वो हुआ नहीं.
1: ओके. राइट सर, एक हमारे लिसनर हैं एंड ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, श्री रंगम राजेश, श्री रंगम तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से लिख रहे हैं मैसेज. एंड आपको गुड इवनिंग कहते हुए कह रहे हैं कि बॉन्डेड मेजर एस के यादव सर, मिकी यादव सर, ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड द कंपनी है. एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पर उनका जो मैसेज पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मराठा ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड व्हाट्सएप टू एंड योर MH-16 बॉन्डेड रेजिमेंट टू एंड बॉन्डेड कैवलरी कैवले यादव सर टू. आई डोंट नो व्हाट ही मीन्स बाय दैट बट समथिंग ही इज रिटन टिपिकल ऑफ महाराष्ट्र इज वणक्कम एंड दैट इज समथिंग वेरी स्वीट. समबडी नोन टू यू?
0: यस. नो नॉट नोन टू मी बट यू नो वणक्कम आई थिंक इज नॉट अ महाराष्ट्रियन वर्ड, परहैप्स तमिल वर्ड.
1: तमिलनाडु से लिख रहे हैं और
0: ही हैज द स्पिरिट
1: सारा किया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय तमिलनाडु, जय भारत. दैट्स द स्पिरिट दैट वी लिव विद है ना.
0: कैवलरी रेजिमेंट को ऑफिसर्स को कई बार कैवलियर बोल जाते हैं.
1: ओके. सूरज जी हमें दिल्ली से कह रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं 20 वर्ष का हूं और सिविलियन हूं, बहुत डिसिप्लिन रहना चाहता हूं, कभी कभी मुश्किल होता है लेकिन आप लोगों की बातें सुन के प्रोत्साहन मिलता है. और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर, आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की तो मैं फिर से जानना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा इफ इट्स अलाउड टू डिस्क्लोज, हमारी टैंक रेजिमेंट एक्टिव तो थी पर कितना, मतलब बहुत चौकन्नी भी थी एंड इट्स लाइक
0: No, no. In entire Operation Sindoor, mein, all our fighting arms, whether the tanks, infantry, they were in operational stage. Chutti leave was all cancelled. One did not know which way the war would go.
1: Okay.
0: And initial war, jo shuru hua hai, that was all, as I said, an air force war, an artillery war.
1: Yeah.
0: The tanks and the infantry was not used, but they were operationally ready. To go in should the orders come and they were absolutely ready to
1: okay main seedhe tough questions poochta hu sir aapse kyunki aap tank regiment aap uska ang reh chuke hain, you've headed your own group. इज इट

0: बिकम मोर डिफिकल्ट नाउ टू स्टेप इन टू द एनिमी जोन इस मॉडर्न एरा में?
1: यू सी, देखिए ऐसी बात है कि टेक्नोलॉजी जिसके पास है, आई वुड से ही इज हैज एन अपर हैंड,
0: सुपीरियर है वो.
1: यस,
0: ओके.
1: सो अपेरेंटली द चाइनीज डिड गिव देम लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू विच देवर सम अर्ली दे ट्राई टू डू समथिंग हेयर एंड देयर. टर्की इंटरवीन्ड इन द ड्रोन्स एंड स्टफ लाइक दैट.
0: जी,
1: बट वी आर, देखिए टेक्निकली एंड अदरवाइज पाकिस्तान इज नो मैच टू द इंडियन आर्मी एट ऑल, एंड आई एम सेइंग दिस ऑन एयर. इट इज नो मैच एट ऑल इन ए लाइव वॉर. इन ए कन्वेंशनल वॉर टूडे दे वुड नॉट लास्ट मोर देन 72 आवर्स एट द मोस्ट, नॉट एट ऑल. देयर इज नो मैच एट ऑल.
0: सर, हमें न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से हमारी सरहदों के पार फीजी आइलैंड से लेकर ब्राजील, कनाडा, यूरोप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में सुना जा रहा है. दैट्स अ बोल्ड कॉमेंट, अ स्टेटमेंट दैट यू गिवन.
1: आई मेंट एवरी वर्ड ऑफ इट, एंड नोइंग द इंडियन आर्मी, द केपेबिलिटीज, यस, इट हैज नॉट बीन टेस्टेड फुल्ली इन ऑपरेशनल सिंदूर, बट शुड इट बी रिपीटेड एवर, I think it will come to light what the Indian Army means about.
0: ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अफसोस की बात है ना सर, और एक तरीके से हम एनिवर्सरी मना रहे हैं. थोड़ा दुख है कि पहलगाम में वो चीज़ हुई और उसके बाद भारत ने जवाब दिया. दुख है कि हमारे को सिविलियन लाइव्स खोनी पड़ी, उसका तो दुख है. एक छोटी सी, अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी झलकी ऑपरेशन सिंदूर की लेते हैं, और इस छोटे से किस्से में सब कुछ समझ में आ जाएगा. और आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूँ सर आपकी आंखों में, आह, लाजवाब है सर. इसे सुनते हैं सर.
2: मेरे पति को बचा लो.
3: हम बचा देगा, कोई बात नहीं. बेटे के क्या हुआ, इसको क्या हुआ?
2: प्लीज प्लीज प्लीज आस्क फॉर हेल्प.
3: ओके, डोंट वरी, डोंट वरी. यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? अपने आप बोले ना मुझे.
2: यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी.
3: यहाँ पे
2: उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी.
4: The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
5: I say to the whole world, identify, track and punish every terrorist and their backer.
6: Operation Sindoor, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था.
4: It was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice.
7: 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed.
8: These locations are Lahore, Gujranwala, Chakwal, Rawalpindi, Attak, Bahawalpur, Miano, Chor and near Karachi.
9: To target civilian population, it's extremely unfortunate.
10: Just to point out,
11: we're not going to get involved in the middle of war. That's fundamentally none of our business.
10: That terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history.
12: This was time to convey some message to our adversaries.
13: We were of course prepared.
14: Few things have been said at the level of the Prime Minister.
15: भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा.
14: And this has never happened in the history of independence.

0: does that? I mean, it was pinpoint sort of, you know, absolutely, they were literally, they were knocking on the door of their nuclear storage facility, which is a big thing.
1: Okay. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस भी अच्छा होना बहुत जरूरी है ना. वी डिफेंडेड वेल ऑल्सो. ऐसा तो नहीं है कि वहां से अटैक नहीं है. अटैक्स तो बहुत आए लेकिन सारे विफल किए हमने.
0: एब्सोल्युटली. उनके बेसिकली ड्रोन अटैक्स थे. अटैक तो क्या आया था उनका, मतलब एक एक आध कोई मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ भी डाला था, जो कि मेरे ख्याल से मिडवे पंजाब में कहीं ऑलरेडी शूट डाउन कर दिया गया था.
1: जी, दैट वाज द नियरेस्ट. बट हाउ डू यू नो कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा था सर? हमारी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल फायर होता है उसका रूट पता लग जाता है.
0: जब एनालाइज करते हैं जो मिसाइल को, तो उसकी रेंज देख लेते हैं ना. अगर लाहौर से उस एरिया से जहाँ से अगर लॉन्च किया है, अगर it's a city which is being targeted. So it was downed. It was absolutely shot down. So that's a big thing. And I think that was the only real thing which was threatening to the city. And I was very surprised that they started saying that Delhi has been bombarded and Delhi is gone and Delhi is finished. All
1: you heard that?
0: Yeah, I mean they were saying abhi Delhi pe bombarded ho gayi hai, ye bombardment ho gayi hai. I mean all false fake news.
1: Sir, hamare traffic jam mein phasenge tab unhe pata lagega ki how difficult it is to go out from here.
0: Yes.
1: Anyway sir, ये तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की और ये चर्चा हम जारी रखेंगे.

0: आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और बहुत ही खास हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं आज के, और वो हैं मेजर एस के यादव। और बहुत सारे लोग आपको, आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको मेजर मिकी यादव भी कहते हैं। ओके, आप लोग का एक सॉलिड ग्रुप है, आपने कहा कि वी आर स्टिल बॉन्डेड टुगेदर। व्हाट्सएप का आपने कहा था कि ग्रुप है, तो इन ऑल कितने लोग होंगे उसमें?
1: एनडीए का ग्रुप है, हम लोग करीब 350 लोग थे जो पास आउट हुए थे एनडीए से। देखिए एनडीए का ग्रुप अलग है, आईएमए का ग्रुप अलग होता है, जो एनडीए के थ्रू नहीं गए लेकिन डायरेक्ट एंट्री होते हैं, तो दो ग्रुप्स हैं।
0: ओके,
1: तो एनडीए को हम बॉन्डेड बोलते हैं, बॉन्डेड ग्रुप है।
0: तो वो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब आप लोग कैसी बातें कर रहे थे?
1: और डिस्कशन होती थी और डिबेट्स भी, क्योंकि उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हम तीनों थे कोस्ट गार्ड। तो एयरफोर्स वाला अपना एक्सपर्ट बताता था, आर्मी वाला अपना, और नेवी वाला, वो जो देवर नेवी वाज ऑपरेशनली रेडी एक्चुअली फॉर द ब्लॉकेड।
0: मेरा अगला यही सवाल था कि सर आपको तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही होगी।
1: हाँ, ऑन द ग्रुप वॉट एवर दे आर ऑल्सो दे यूज टू प्रेडिक्ट, दे टू से वॉट शुड बी डन, वॉट वॉज नॉट डन राइटली, वॉट वॉज डन राइटली, एंड वी यूज टू डिबेट ऑल दैट।
0: एंड ऑफकोर्स एक जज्बा बॉलीवुड भी तो लेकर आता है ना आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आप गीत सुनते हैं कभी, गीत सुन के भी एक जज्बा जोश आ जाता है। हम लोगों को तो आता है, आप लोगों को भी आता है?
1: एब्सोल्युटली।
0: आकाशवाणी के साथ आपका कैसा लगाव रहा है?
1: पर्सनली मेरा फेवरेट है वो, बिकॉज इट गिव्स मी यू नो लॉट ऑफ रेट्रो म्यूजिक आल्सो, इट गिव्स मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक, सो आई लाइक इट, इट्स माय फेवरेट।
0: एफएम गोल्ड भी है जिसमें,
1: एफएम गोल्ड है, आई लाइक इट।
0: तो आपने कब वास्ता कब पढ़ा आपका रेडियो से?
1: देखिए रेडियो तो एवर सिंस वी वर कमीशनड, हमारे पास तब ट्रांजिस्टर होता था, एक छोटा सा एफएम तो नहीं था तब, ऑल इंडिया रेडियो चलता था, चाहे बॉर्डर पे हो कहीं भी हो। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक ANPRC 25 रेडियो सेट होता था, हम लोग जब ब्रास्टैग एक्साइज में थे और हम लोग ट्यूनिंग करते थे, कई बार हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे तो उनके गाने आ जाते थे उसमें।
0: अच्छा, उनके गाने उनके, हमारे भी जाते हैं सर,
1: हमारे भी जाते हैं, तो उसको लगा देते थे, शेव करते करते गाने सुन लेते थे
0: जी।
1: वो जमाना था। सो रेडियो हैज हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली।
0: ऑलराइट, तो कोई गीत अभी आप अगर बोलें कौन सा गीत प्ले करें?
1: हाँ, एक तेरी मिट्टी, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम नीति, नीति भल्ला।
0: ओके, आप ही के बॉन्डेड जो ग्रुप है उन्हीं की एक सदस्य
1: हैं, फ्रेंड्स हैं, में से बॉन्डेड तो नहीं है, बॉन्डेड तो एनडीए वाला ग्रुप है, ये लेडी।
0: ऑलराइट, तो नीति जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आकाशवाणी में।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ में और T-72 टैंक के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, टैंक रेजिमेंट के साथ रह चुके हैं. आपके पूरे इस करियर में विद द यूनिफॉर्म ऑन कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे सिविलियंस के साथ जो बड़ा यादगार है, एक्शन के दौरान या कुछ एडवेंचर?
1: पर्सनली मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूँ आपको. जब मैं यंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था तो मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था रेजिमेंट का. और मेरे
0: ज्यादातर लोग कहते हैं आप जान बूझ के लाते हो, बट इट्स वंडरफुल टू हियर. प्लीज गो
1: ऑन. एक एडजुटेंट होता है हमारे, टोनी बेन्स, ही इज इन द यूएस नाउ. आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग दिस, बट मैं नया नया था, मेरी 2 महीने की सर्विस थी.
0: ओके.
1: तो उन्होंने बोला शो मी द फुटबॉल शूज, डिस्प्ले करो कैसे हैं. तो मैंने शूज निकाले, डिस्प्ले कराए सारे रेजिमेंट के. तो एक शू में लेसेस नहीं थे, तो उसने उसकी वजह से मुझे गार्ड ड्यूटी, एक राउंड द क्लॉक गार्ड ड्यूटी की पनिशमेंट दी थी. उसमें क्या होता है कि यंग ऑफिसर को हर 1 घंटे बाद गार्ड रूम, एक जो हमारा होता है जहाँ पे हमारा एम्यूनिशन रखा होता है, वहाँ जाके साइन करना पड़ता है एवरी 1 आवर, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट 9 PM टू मॉर्निंग 6 AM, सो दैट यू डोंट स्लीप.
0: अच्छा.
1: सो दैट इज अ पनिशमेंट फॉर द यंग ऑफिसर इफ यू मेक ए मिस्टेक.
0: ओके.
1: सो माई मिस्टेक वॉज दैट आई did not ensure that there were laces in the football shoes
0: ever.
1: So that I used to always remember. And
0: but it groomed you into a good individual.
1: Yes, exactly. NDA mein also aapko main ek cheez bataunga ki agar aapke paas table manners nahi hai, they teach you other than this, they teach you things like table manners, courtesy, opening the door for the lady, table ke upar aap एल्बो रख के नहीं खा सकते. अगर आपके सीनियर ने आपको देख लिया
0: जी,
1: तो वो आपका पूरा नमक आपके अंडे में डाल देगा.
0: वो बोलेगा खाओ,
1: पूरा आप खाओ, या पूरा का पूरा आपको बोलेगा टेबल के नीचे जाओ. और वो सारे वहां से जो गलती कर देते थे नीचे से उसको बम्प्स पिक किक करते थे. तो ये चीजें आपको याद रहती है लाइफ पर, यू नो कि.
0: बट आपको प्रॉब्लम नहीं होती ये सब डिसिप्लिन लेके जब आप सिविलियन सोसाइटी में आप जाते हैं?
1: काफी फौजियों को होती है, बट एडजस्ट करना पड़ता है. बट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट.
0: गुस्सा कैसे चबाते हैं फिर आप?
1: अंदर अंदर हम बोलते हैं दीज ब्लडी सिविलियंस. जोकिंग करते हैं, दिस इज ऑल जोक्स. बट यू नो अगर कोई मैनर्स वूनर्स का अगर हमारे जैसे होता है तो हम अपने मन में ही करते हैं.
0: आप जब आपने अपनी सर्विस पूरी कर ली उसके बाद एडवेंचर में आप चले गए? बिल्कुल. नेचर से बहुत प्यार करते हैं.
1: चला गया था
0: जी.
1: एंड माय कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग बंजी जंपिंग इनटू इंडिया. वी वर द सेकंड कंपनी टू ब्रिंग हॉट एयर बलूनिंग इनटू इंडिया. एंड वी यूज्ड टू सेट अप एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर ट्रैक्स, माउंटेनियरिंग एंड स्टफ लाइक दैट, व्हिच वी स्टिल डू. द कंपनी, आई डोंट नो वेदर आई कैन टेक द नेम ऑफ द कंपनी, वंडरलस्ट, एंड इट्स अ वेल नोन कंपनी नाउ.
0: तो आप एडवेंचर में, मतलब आपका शुरू से ही शौक था?
1: हाँ, ऑलवेज, राइट फ्रॉम द आर्मी डेज.
0: जब तक पैशन नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते ना काम.
1: आर्मी डेज से. एंड इवन नाउ टुडे वी आई एम अ ट्रैकर, आई ट्रैक अ लॉट. वी आर गोइंग फॉर अ हरकी डून ट्रैक नेक्स्ट मंथ नाउ, एंड वी डिड द ग्रेट लेक्स ट्रैक.
0: और कोई सिविलियन आपके साथ जुड़ना चाहे जो डिसिप्लिन्ड है वो जुड़ सकता है?
1: नहीं नहीं, सिविलियंस आर आल्सो डिसिप्लिन्ड, दे हैव गुड लॉट, एंड आई हैव लॉट ऑफ सिविलियन फ्रेंड्स, एंड वी ऑल गो टुगेदर इन माय ट्रैकिंग ग्रुप या अदर ग्रुप्स.
0: कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? ये बताइए कि आज के टाइम पे जो युवाओं को आप देखते हैं, है ना, लेट्स गेट टू दिस पॉइंट स्ट्रेट, जब आप इनको देखते हैं तो आप 15 साल की उम्र में एनडीए गए, आप एक डिसिप्लिन्ड बॉय बन गए या बना दिए गए, उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपकी चली आगे. आपको लगता है कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ शायद चाहेंगे कि फौज में आए, कुछ नहीं आ पा रहे होंगे, तो फौजी जैसी जिंदगी वो डिसिप्लिन्ड लाइफ कैसे जिए?
1: देखिए, मेरा कहना है, एंड इट्स ए पर्सनल ओपिनियन, दैट एवरीबडी शुड स्पेंड सम टाइम इफ दे कैन इन द आर्मी फॉर, इवन इफ इट इज फॉर 5 years, लाइक द शॉर्ट सर्विस कमीशन. ये जो बेस बनता है ना, जो शुरू का, एंड वो जो डिसिप्लिन्ड जो बेस होता है, आप वो बेस 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नहीं बना सकते.
0: ग्रेट पॉइंट.
1: यू हैव टू कैट देम यंग. एंड ये अगर हम बेस दे दें अपने यूथ को कि आपको पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं कि कंपलसरी आपको 5 years या 3 years की आर्मी ट्रेनिंग करनी है, देर विल बी ए होल लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट डिसिप्लिन,
0: यस,
1: टेल्स ऑफ पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, सो थिंग्स लाइक दैट विच द आर्मी टीचेस यू, एंड आई होप समडे दिस हैपेंस.
0: राइट, आपको प्यार व्यार नहीं हुआ कभी सर? आप बहुत सीरियस सीरियस बातें करो. टैंक की बात कर दी मैंने, फायर कर दिया हेलीकॉप्टर से, जनरल उतरे उन्होंने बोला टैंक को इधर करो कुछ.
1: आप जब यंग ऑफिसर होते थे नाभा में, एक छोटा सा स्टेशन है पंजाब में.
0: अच्छा,
1: मुझे मालूम है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, कोई भी सीओ की डॉटर्स होती थी, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग टेनिस बैडमिंटन खेलते थे,
0: जोर जोर से शॉटें मारते थे,
1: कभी कभी कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते थे तो अच्छा। टेनिस कोर्ट के पास कहीं एक लेटर चला जाता था, वहां से दूसरे दिन लेटर आता था, तो बस वही होता था,
0: बस
1: दैट इज द टाइप ऑफ रोमांस वी डिड इन दोस डेज.
0: अच्छा, एक रोमांटिक गाना चला देता हूँ सर, आप ही की प्लेलिस्ट से लिया हुआ है कुछ, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किसकी फरमाइश चाहिए? बताते हैं सर, ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं जल्दी.

0: टू सोल्जर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जौली और हमारे साथ मेजर एस के यादव मौजूद हैं। तो यादव साहब, अच्छा किया आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि रोमांस है आपके दिल में और चिट्ठियां आप लिखते थे, तो फौजी की चिट्ठी भी वही होती है कि बम धड़ाके वाली या कुछ रोमांटिक बातें होती हैं उसमें?
1: फौजी भी आप जैसे ही हैं, हम और आप, और हमें भी वही फीलिंग्स है जो आप में है और वही जज्बा है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस।
0: दिल्ली में अभी ये मौसम चल रहा है कि बोगनविलिया बहुत देखने को मिलता है, और उससे जुड़ी कोई खास बात आपसे जुड़ी हुई है?
1: बोगनविला मेरा एक पैशन था, एक माउंटेन्स भीमताल के पास एक मैंने फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है।
0: ओह वंडरफुल।
1: और उसमें करीब 500 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं।
0: ओह।
1: एंड आई कॉल इट बोगनविला माउंटेन रिट्रीट। और 5 कॉटेजेस बनाई है, जो द गुड थिंग अबाउट दैट इज कि उसमें कोई आरसीसी फुटप्रिंट नहीं है।
0: ओके।
1: खाली पाइन वुड, ग्लास और लोकल स्टोन का है।
0: अच्छा।
1: और उसमें खाली नेचर है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पहाड़ है। That is it.
0: आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है वहीं पहुंच गए।
1: मैं वहीं पहुंच जाता हूं ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड।
0: वहीं पहुंच जाता हूं। आप डॉग लवर भी हैं सर?
1: यस।
0: आपने बातों बातों में हमें बताया और मैं भी डॉग लवर हूं, एंड अभी लगभग 2 दिन पहले दिल्ली कैंट एरिया में जो कैंट बोर्ड है उसके जरिए एक वेट हॉस्पिटल भी खोला गया और न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, सुन के अच्छा लगा। तो ये
1: मेरे पास मुझे याद नहीं है मेरी इंटायर लाइफ में एक्चुअली मेरी फैमिली में एक डॉग ना हो।
0: अच्छा।
1: एवर।
0: ओके।
1: माय फादर वाज ए डॉग लवर एंड आई हैव हैड लैब्राडोर्स। अब मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, शिफू है उसका नाम। और अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी शीप डॉग जो उसको रोड साइड पर मिला था उसको उसने रेस्क्यू
0: किया। ओके।
1: एंड थैंक यू विवेक अगर आप सुन रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप इसको रखना चाहें तो हम
0: विवेक
1: उसका नाम रखा है और उसको हमने अभी 5-6 महीने का है एंड इज ए शीप डॉग और बहुत मजा आता है।
0: मेरे पास फोन आते हैं आईपीएल के मैचेस आ रहे हैं, पासेस मिलेंगे पासेस में, विवेक ने अगर डॉग की जान बचाई तो एक पास उसको दूंगा आईपीएल का। मैं नहीं सर, मैं देख के रहूंगा।
1: ओ वैसे विवेक यू अर्न अ पास आईपीएल पास इफ यू लिसनिंग।
0: टॉप टियर होगा,
1: लैंडोर में रहते हैं मसूरी के पास।
0: ओ, फिर तो बच गए। एनीवे सर, सर यू जस्ट मेंशन अबाउट योर डैड, आई थिंक हमारे प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता कि आपके एक तरीके से आइडल, आपके इंस्पिरेशन, आपके फादर फॉर्मर एयरफोर्स पायलट, हंटर जहाज उड़ाते थे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, जो फाइटर पायलट, यू नो, बिलोंग्स टू माय कम्युनिटी। टेल अस समथिंग अबाउट हिम सर।
1: माय डैड केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा
0: जी,
1: एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज।
0: वाओ।
1: एंड देन जॉइंड द एयरफोर्स।
0: हरियाणा में कहाँ से सर?
1: एक गांव है रेवाड़ी के पास कॉल्ड दखोरा, इट्स नियर कोसली, अगर आपने सुना रेवाड़ी, रेवाड़ी तो सुना।
0: वहां से और भी फाइटर पायलट्स आए?
1: कोसली इज अ विलेज बाय द वे इन हरियाणा जहां पे सारे ऑफिसर्स, यहां देयर इज अ ऑफिसर्स मेस इन दैट विलेज।
0: वाओ।
1: तो
0: स्क्वाड्रन लीडर मनीष यादव
1: काफी हैं, एयरफोर्स के भी हैं।
0: ओके।
1: सो दैट इज हाउ ही, दैट इज हिज रूट्स एंड देन ही ग्रू अप इन।
0: एंड वाज ही पार्ट ऑफ द वॉर? Hunter उड़ाते
1: yes, yes, he was, he's seen the 71 war, he's seen the 65 war, yes.
0: Okay. और क्या खास बात थी जो आप उनको, हमारे डैड हीरोज तो होते हैं लेकिन सबके डैड के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, तो आपको क्या लगता था उनके अंदर?
1: सुबह सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे मैं देखता था छोटा बच्चा और मैंने कहा यार मैं कब बड़ा होऊंगा और ये यूनिफॉर्म पहनूंगा। और ऊपर हवाई जहाज उड़ते थे, देखते थे हम लोग। एंड मेरे फादर भी टॉल थे, नाइस, एंड फॉलोड हिज फुटस्टेप्स।
0: पर आपने भी फ्लाइंग सीखी है?
1: हाँ।
0: एंड यू आर अ क्वालिफाइड पायलट?
1: यस, आई हैव गॉट अ सीपीएल।
0: ऑलराइट। तो हाउ कम एयरफोर्स को छोड़कर, नॉट दैट टैंक में नहीं जाना चाहिए था लेकिन लड़ाकू टैंक, लड़ाकू विमान?
1: आई लेफ्ट द आर्मी, आई वेंट अवे टू यूके।
0: ओके।
1: एंड कैंट से मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया था।
0: वाओ। राइट सर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे और बढ़ें। आपके जो बॉन्डेड ग्रुप है वहां से कोई और फरमाइश तो नहीं आई सर गाने की? अगर आई है तो हम जाने से पहले उसे प्ले करेंगे सर।
1: काफी है लेकिन आप अगर एक ये कर दो, अभी ना जाओ छोड़ करके।

कि दिल अभी भरा नहीं सर, ये तो हमें कहना चाहिए आपके लिए कि अभी ना जाओ छोड़कर। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक गीत है, तो इसको मैं चलाता हूँ ढूंढ के सर।

0: राइट देन सर, इट वाज अ शियर प्लेजर आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये गीत तो मैं चला रहा हूँ, बट वी मीन इट एवरी लिरिक ऑफ दिस गोल्डन सॉन्ग. कुछ चलते चलते हमारे युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: थैंक यू सो मच गाइज. Play a lot of sports, play a lot of, whether it's tennis, swimming, outdoors, and see less of screen time. That's it.
0: Wo bahut zaruri hai sir. But it was a sheer pleasure hosting you, sir. And you please so look after yourself, and thank you so much.
1: Thank you. Thank

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ಸರಿಯಾಗಿ 7:35 ಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अधिक रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
1: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
3: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविन्द्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रहे सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रीकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सिंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवीके नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार।

0: कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कंफर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले दौरान तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Nation salutes bravery and sacrifice of armed forces on first anniversary of Operation Sindoor. President, Vice President and Prime Minister call it a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. West Bengal Governor dissolves assembly. Political parties on to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Railways to move to upgraded passenger reservation system from August, replacing the 40-year-old system. Minister Ashwini Vaishnaw directs officials to ensure smooth transition. President of Vietnam Tho Lam emphasizes his country and India together have opportunity to be key players of global supply chain. And in archery, Indian women's recurve team ensures country's first medal at World Cup Stage 2, beating South Korea in semi-final at Shanghai. And now the news in detail. The nation today saluted the courage, commitment and supreme sacrifice of the armed forces on the first anniversary of Operation Sindoor. On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their messages on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of country's uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said today, "The nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers." Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi said, "The country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem." Mr. Modi said, "The Indian Armed Forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation." He said the forces gave a befitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valour. Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah and Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw also honoured the valour and sacrifice of the Indian Armed Forces on the anniversary of Operation Sindoor. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal stressed that cross-border terrorism has long been used by Pakistan as an instrument of state policy.
4: "We are marking the first anniversary of Operation Sindoor. The entire world saw the Pahalgam terrorist attack for what it was. We gave a befitting reply to Pakistan for its sponsorship of cross-border terrorism. The world knows that cross-border terrorism has long been used by Pakistan as an instrument of state policy. We in India have every right to defend ourselves against terrorism. We will continue to work to strengthen the global fight against terrorism."
3: Responding to a query on repatriation of illegal Bangladeshis, Mr. Jaiswal said that more than 2,860 cases of nationality verification are pending with Bangladesh.
4: "Over 2,860 cases of nationality verification are pending with Bangladesh, and some of it for over 5 years. Our policy, as you very well understand, is that any foreign national who is illegal in the country, he or she must be repatriated as per laws, procedures and established bilateral mechanisms. We expect that Bangladesh will expedite nationality verification so that repatriation of illegal immigrants can take place in a smooth manner."
3: On Khalistani groups in Canada, the spokesperson said that India has consistently spoken out about concerns regarding the use of Canadian territory as a safe haven by extremist and separatist elements.